0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ और आज एक नया दिन है, एक नया शो है। 90s के दौरान यू नो बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में फैमिली, प्यार, ट्रेडिशन और कल्चर पे बना करती थी। उस टाइम पर बॉलीवुड वेंट ग्लोबल एंड रीच्ड वाइडर ऑडियंस, जिसकी स्टोरी लाइंस बहुत ही चैलेंजिंग होती थी और तब का वो समय था जब फीमेल ओरिएंटेड रोल्स की एंट्री हुई। तो आज का शो उन खूबसूरत एक्ट्रेसेस के नाम होगा जिन्होंने अपने वर्सिटैलिटी और ग्रेस के साथ स्टीरियोटाइप्स तोड़े और बॉलीवुड हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। और ग्रेस की बात करें तो सबसे पहले अगर कोई दिमाग में आता है तो वो है माधुरी दीक्षित। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन को शुरुआत में फिल्म्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री लेना चाहती थी, उनके पास डिग्री है भी, और वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। वैसे माधुरी ने कथक डांस भी सीखा हुआ है, 8 साल की ट्रेनिंग ली है, नो वंडर इसीलिए उन्हें डांसिंग क्वीन बुलाया जाता है। 1984 का वो समय था जब अबोध फिल्म से इन्होंने अपने करियर की, फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। ये फिल्म तो चली नहीं लेकिन माधुरी जी को क्रिटिक्स से बहुत तारीफें मिली और फिर क्या था, उनकी तकदीर की गाड़ी निकल पड़ी और एक टाइम आया जब वो 3-4 फिल्में एक ही साल में रिलीज करती थी। आपको पता है जब हम आपके हैं कौन फिल्म आई थी ना, उस समय माधुरी की फीस सलमान खान की फीस से 2.75 करोड़ ज्यादा थी। वाह, मतलब एक्ट्रेसेस का भी एक जमाना हुआ करता था। खैर आइए इसी बात पर शो की शुरुआत करते हैं इसी फिल्म के गाने के साथ, लता जी और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में मौसम का जादू। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर आज ये 90s की दीवाज पे स्पेशल एडिशन मेरे आने रुचि के साथ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ. वेलकम बैक. आज के इस रेट्रो बॉलीवुड शो में मैं बातें कर रही हूं 90s के कुछ ऐसी डिवाज के बारे में जिनके बिना हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी. 90s में एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा और अपनी यूनिब्राउ पॉपुलर कर ली थी इन्होंने, जो अपने चेयरफुल आउटस्पोकन हैप्पी गो लकी नेचर के लिए जानी जाती थी. ऑफकोर्स आप पहचान ही गए हैं, मैं बात कर रही हूँ काजोल की. काजोल की फिल्मी दुनिया में एंट्री 1992 की बेखुदी फिल्म के साथ हुई थी, लेकिन उन्हें पहली कमर्शियल सक्सेस बाजीगर से मिली जब उन्हें पहली बार शाहरुख के साथ ऑन स्क्रीन पेयर किया गया था. और फिर क्या होना था, काजोल ने जब भी शाहरुख खान के साथ में फिल्में की हैं वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं. वैसे काजोल के लिए सबसे टफ किरदार गुप्त फिल्म का था, क्योंकि उन्हें एक मीन ग्रे शेड का जो कैरेक्टर था वो प्ले करना था. लेकिन इसी रोल के कारण शी बिकेम द फर्स्ट वुमन एवर टू विन अ फिल्म फेयर फॉर अ नेगेटिव रोल. जहां दूसरी एक्ट्रेसेस के लिंकअप की खबरें सामने आती रहती थी, वहीं काजोल इन सबसे काफी दूर थी. कॉन्ट्रोवर्सीज इन्हें छू भी नहीं पाती थी. इनफैक्ट गुंडा राज फिल्म की शूटिंग के दौरान शी स्टार्टेड डेटिंग अजय देवगन और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी. उनकी शादी भी अजय देवगन से ही हुई विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सीज. लोगों ने जरूर इनके अनलाइकली पेयरिंग को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म जो था वो इन्हें दिया था, लेकिन इनके प्यार को किसी की परवाह नहीं थी. वैसे काजोल का लकी नंबर 5 है, इसीलिए 1995 में उनकी 5 फिल्म्स रिलीज हुई थी और सभी ब्लॉकबस्टर चाहे ना रही हो, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आज तक भी हम याद करते हैं. तो इसी फिल्म से आपको अगला गाना सुनाती हूँ लता मंगेशकर जी की आवाज़ में. हर लड़की ने अपने टीनेज में कभी ना कभी तो इस गाने पर डांस किया ही है. मैं हूँ रुचि आपके साथ वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की कुछ बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस के बारे में, या यूं कहें कि डीवाज के बारे में आज यहां पर मैं और आप मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। और जब हम डीवाज की बात करें तो श्रीदेवी जी का नाम सामने ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। श्रीदेवी जी को दिल से याद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला की भी अगर कोई इंस्पिरेशन थी बॉलीवुड में तो वो श्रीदेवी जी ही थी। श्रीदेवी जी ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख, सलमान तक ऑलमोस्ट सभी टॉप स्टार्स के साथ काम किया था। फिल्मों के साथ फैशन में भी वो काफी पॉपुलर थी। उनका आइकॉनिक चांदनी लुक मतलब फैशन का सीन ही चेंज कर गया था इंडिया में। सुना है डायरेक्टर यश चोपड़ा जी ने चांदनी के लिए पहले रेखा जी को ऑफर भेजा था, लेकिन सिलसिला फिल्म में उन्होंने चांदनी नाम का कैरेक्टर पहले ही कर लिया था तो उन्होंने मना कर दिया और खुद श्रीदेवी को उन्होंने ही रेकमेंड किया था इस रोल के लिए। और बताइए, ये जो एक कैरेक्टर था ये श्रीदेवी जी के लिए जैसे एक बेंचमार्क बन गया था। एक बार यश जी अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे और रास्तों पर सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। इट वॉज देन जब उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ बदलाव लेकर के आना है और अब थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में भी, रोमांटिक कहानियां भी लोगों को सुनानी है, दिखानी है। एंड दैट इज वेन उनके दिमाग में चांदनी फिल्म का ख्याल आया था। इस फिल्म की इतनी बात हो रही है तो चलिए इसी फिल्म का गाना आपको सुनाऊंगी, श्रीदेवी जी का गाना। ऑफ कोर्स 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट डीवाज। लेकिन उसके पहले लम्हे फिल्म से हरिहरन और लता दीदी की आवाज में अगला गाना कभी मैं कहूँ। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो जारी है। मैं हूं रुचि, आपके साथ 90s की दीवाज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्रीदेवी जी के बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं के दो गाने अभी आपने सुने, और अब मैं 90s में सबसे क्विक सक्सेस जिन्हें मिली उनके बारे में बात करूंगी। नाम है इनका जूही चावला। जूही ने 1984 में मिस इंडिया का क्राउन जीता था। वैसे आप जानते हैं जूही भी कथक में ट्रेन थी, और वो भी 3 साल तक की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर भी रही है ये। लेकिन जूही इन सब के कारण नहीं, बल्कि अपने कॉमिक रोल्स और चीयरफुल पर्सोना के लिए बहुत पॉपुलर थी। लेकिन फिर भी एक बार इनके और आमिर खान के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि इश्क फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने जूही चावला पर एक खतरनाक प्रैंक, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। जूही को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो नाराज हो गई थी, और अगले दिन शूट पर ही नहीं आई, जिसके कारण उस दिन बहुत सारा लॉस हुआ था प्रोडक्शन टीम को। और आमिर खान काफी नाराज भी हो गए थे कि मैंने तो मजाक किया था, इसके ऊपर जूही इतना क्यों बुरा मान गई। कुछ दिन के बाद में इन दोनों के बीच में लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, एंड ऑब्वियसली शूटिंग फिर से शुरू हुई। दैट्स हाउ हम ये फिल्म जो है इन दोनों के बीच की वो देख भी पाए थे, इश्क, वन ऑफ द फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ दैट टाइम। वैसे जूही की आमिर और शाहरुख दोनों के ही साथ में पेयरिंग काफी पॉपुलर थी, जिसके लिए उन्हें काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। लेकिन शाहरुख खान के साथ जब ये डुप्लीकेट फिल्म की शूटिंग कर रही थी प्राग में, उस समय शूटिंग के दौरान जूही चावला ने अपनी माँ को खो दिया था और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था। काफ़ी हैवी लॉसेस हुए थे इस फिल्म के प्रोडक्शन टीम को, क्योंकि शूटिंग रोक दी गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ा था तो वो शाहरुख खान थे, क्योंकि शाहरुख ने खुद कह दिया था कि जो भी लॉसेस हैं वो मेरी फीस में से काट दो, लेकिन इस फिल्म को जारी रखो। आई थिंक दैट इज वाई ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। बट एनी वे, जूही चावला की बात हो ही रही है, 90s की एक बहुत ही बेहतरीन डीवा, तो जूही चावला और शाहरुख खान की ही फिल्म डर से सुपरहिट गाना आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूँ रुचि आपके साथ। 90s की मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस डांस में अव्वल थी। अगर माधुरी और जूही कथक ट्रेन डांसर्स थे तो मनीषा कोइराला भरतनाट्यम और मणिपुरी ट्रेन डांसर। मनीषा अपनी टाइमलेस क्लासिक ब्यूटी और एलिगेंस के लिए पॉपुलर थी। एक्टिंग के पहले उन्हें डॉक्टर बनने की चाहत थी, लेकिन बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स ने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। मनीषा ने बॉलीवुड के साथ साथ नेपाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था 1991 की फिल्म सौदागर के साथ में, और वो उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। वैसे शादी से पहले मनीषा वॉज क्वाइट पॉपुलर फॉर हर टर्बुलेंट अफेयर्स। इनफैक्ट अपने सौदागर फिल्म के को स्टार विवेक मुश्रान के साथ अफेयर की खबरें भी इनके सामने आई थी, लेकिन बाद में इन दोनों का ये जो अफेयर था ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, मनीषा कोइराला अपने जमाने की सबसे ज्यादा कमिटमेंट फोबिक एक्ट्रेस मानी जाती हैं। बहुत डर लगता था इन्हें रिलेशनशिप्स में घुसने से, चाहे ये अपनी रियल लाइफ में ऐसी थीं, लेकिन फिल्मों में तो इन्होंने काफी रोमांटिक रोल्स भी निभाए हैं। फिलहाल मैं आपको मनीषा कोइराला की उस फिल्म से गाना सुनाती हूँ

जिसे वो ऑलमोस्ट खो चुकी थी। मैं बात कर रही हूँ 1942 लव स्टोरी की। इस फिल्म के स्क्रीन टेस्ट में मनीषा फेल हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा जी से काफी रिक्वेस्ट करके दूसरा स्क्रीन टेस्ट करवाया था और तब जाकर वो सिलेक्ट हुई थी। आई मीन आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस फिल्म विदाउट मनीषा कोइराला। चलिए कुमार सानू की आवाज में ये गाना, सेलिब्रेटिंग 90s की डीवा मनीषा कोइराला, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं रुचि आपके साथ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। 90s की डिवास के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, और जब 90s की कुछ खूबसूरत एक्ट्रेसेस की बात हो, डिवास की बात हो और ऐश्वर्या राय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐश्वर्या इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हम दिल दे चुके सनम, गुरु, देवदास जैसी फिल्मों से उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इस चीज़ का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने सभी एक्ट्रेसेस, नॉट जस्ट एक्ट्रेसेस एक्चुअली, सभी लड़कियों के लिए सेट किया है। लेकिन क्या आप ऐश्वर्या की एजलेस ब्यूटी का राज जानते हैं? चाहे वो कितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडोर्स क्यों ना करती हों, लेकिन ऐश्वर्या राय आज तक भी सिर्फ आयुर्वेदिक ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने चेहरे पर। वैसे ऐश्वर्या खुद भी एक डॉक्टर ही बनना चाहती थी। उनका बचपन से सपना था कि या तो वो डॉक्टर बने या फिर एक आर्किटेक्ट बने। बताओ बचपन में हम क्या क्या सपने देखते हैं और बड़े होकर के क्या बन जाते हैं। वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सोचिए अगर ऐश्वर्या राय डॉक्टर बनती और आप ऐश्वर्या राय के पास में जाते पेशेंट बन करके, तो आप तो अपना दिल दे करके आ जाते वहां पर, तो अलग दिल के मरीज बन जाते आप, चाहे कोई और बीमारी लेकर के गए होते। एनीवे, ऐश्वर्या राय की बात यहाँ पर हो रही है तो और प्यार हो गया फिल्म से उदित नारायण जी का गाना सुनाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गाना लेकर के आई हूँ। मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से है ये गाना। सुनिएगा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

के एक जाने माने गायक है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका नाम दरअसल कुमार शानू जी नहीं है, बल्कि उनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उनके पिताजी भी स्वयं एक अच्छे गायक और संगीतकार थे। उन्होंने ही कुमार शानू जी को गायकी और तबला वादन सिखाया था। आपको पता है कि उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है इस गाने की वजह से, और वो गाना है सोचेंगे तुम्हें प्यार। ये गाना दीवाना फिल्म से है, जिसका संगीत निर्देशक नदीम श्रवण ने किया है। तो अगर इस गाने की बात ही हो रही है, तो चलो इस गाने को सुन भी लेते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार।

कुमार शानू जी गायक किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे। शानू जी ने गायकी में अपना खुद का एक अलग अंदाज बनाए रखा हुआ है, इसीलिए आज भी उनके चाहने वाले उनके गानों को सुनकर अपना दिल थाम लेते हैं। उनको पहला ब्रेक जगजीत सिंह ने दिया था। उन्होंने ही शानू जी को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया था। 1989 में आई फिल्म जादूगर के लिए कुमार शानू ने एक गीत भी गाया था। क्या आपको पता है कि एक दिन में 28 यानी कि 28 गाने रिकॉर्ड करवाने वाले वह एकमात्र गायक है? हाँ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने 20,000 गाने गाए हैं। कुमार शानू का आज के दौर में संगीत के बारे में कहना है कि आज के संगीत से मेलोडी, सुर, ताल आदि कहीं गुम हो जा रहा है और उसकी जगह शोर ले रहा है। और अगर जहाँ पे मेलोडी गानों की बातें हो रही है, वहाँ पे ये गाना सुनना तो बनता है। ये गाना है साजन फिल्म का, मेरा दिल भी कितना पागल है। आई नो मैं इतनी अच्छे सिंगर नहीं, पर शानू जी तो बेहद ही अच्छे सिंगर है। तो चलो ये गाना सुन लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाने के लिए भी उनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। चलो सुनते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है।

कुमार शानू जी मानते हैं कि आज के संगीत में मेलोडी सुरताल कहीं गुम हो रहे हैं और उसकी जगह शोर ले रहा है। यदि यही वजह है कि आज के अधिकतर गीत यादगार प्रतीत नहीं होते, उनकी चाहत हमेशा रही कि काश उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ कोई गाना गाया होता। बहुत समय से वह बंगाली फिल्मों में सक्रिय है और हिंदी फिल्मों में कम। 2009 में उनके अभूतपूर्व संगीत योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और देश के चौथे सबसे सम्मानित नागरिक के तौर पर मनोनीत भी हुए। फिल्म राउडी राठौर में गीत चमक छल्लो छल छबीली के साथ दोबारा वापसी की। फिर सन 2014 में रिलीज यशराज फिल्म निर्मित दम लगा के हैशा फिल्म में गीत दर्द करारा गाया। और जैसे कि आपको पता है, ये फिल्म का ये सॉन्ग बेहद ही मस्त, जैसा लगता नहीं कि पुराने गाने और पुराना माहौल जैसे फिर से जिंदा हो गया। तो ये गाना तो सुनना बनता है नहीं, तो चलो सुन लेते हैं दम लगा के हैशा फिल्म से दर्द करारा सॉन्ग, जिसको गाया है कुमार शानू जी ने।

कुमार शानू को अधिकतर 1919 के दशक की फिल्मों में दिए गए पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। इसमें फिल्म जुर्म कैसे भूल सकते हैं, जिसका गाना आज भी कोई भी मैरिज पार्टी हो, मैरिज फंक्शन हो या तो प्राइवेट वैलेंटाइन पार्टी हो, इसमें ज़रूर बजाया जाता है। कुछ ऐसे गाने नहीं होते जो भले ही पुराने हो जाए लेकिन दिल के बेहद ही करीब रहते हैं, उनका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही एक गाना है जुर्म फिल्म से, जब कोई बात बिगड़ जाए। ये गाना जब आया था तब से लेकर अब तक की जनरेशन को बेहद ही पसंदीदा है। आप ये गाना हर बार सुनते होंगे, जब ये गाना बजता है तो दिल में कुछ कुछ ज़रूर होता है। तो चलो हम आगे यही सॉन्ग आपको सुना देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं इस सॉन्ग के बाद।

आगे आपने ये सॉन्ग सुना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से अगर तुम अपने दिल की बात शेयर किसी से ना कर सको तो सिर्फ ये सॉन्ग बजा देना। आई नो कि सामने वाला इंसान आपकी बात ज़रूर समझ जाएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग से उनको बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया आशिकी फिल्म के गानों ने। इस फिल्म से उन्होंने शुरुआत कर लगातार 5 सालों तक, 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जीता, जो कि एक कीर्तिमान है। उन्होंने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं। और अब यहाँ पे अगर आशिकी मूवी की बात हो रही है, आशिकी मूवी से जब कुमार शानू जी सुपरस्टार बन गए तो उसी मूवी का एक गाना तो बनता है ना। चलो तो आशिकी मूवी का ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन। आई नो कि मैं उस जमाने से नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जब ये हेलो हाय नमस्कार, गानों की अरे आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड ज़रूर होंगे, तो चलो आज हम ये गाना सुन लेते हैं, अब तेरे बिन, और उसके बाद वापस से मिलेंगे रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि के साथ।

वैसे तो कुमार शानू जी ने उस समय के लगभग सभी संगीतकार के लिए गीत गाए हैं, जैसे कि आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अनु मलिक। लेकिन वो नदीम श्रवण है जिनके साथ उनकी सफलता की शुरुआत हुई और उन्हें सर्वाधिक कामयाबी प्राप्त हुई। हाँ, मैंने आपको जो भी सॉन्ग अभी सुनाए, अब तेरे बिन सोचेंगे तुम्हें प्यार, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस तीनों सॉन्ग में संगीत निर्देशक किया है नदीम श्रवण जी ने। क्या आपको ये पता है कि 2000 में आई हुई हम दिल दे चुके सनम मूवी में गाए हुए एक सॉन्ग की वजह से उनको अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी

पुरस्कार मिला था। और इस मूवी का वो सॉन्ग था आंखों की गुस्ताखिया। हाँ, वही गुस्ताखिया जहाँ पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय आंखों से बड़ी ही गुस्ताखिया कर रहे हैं। अगर इस गाने की बात हो रही है तो आई नो कि आपको ये गाना सुनने का बहुत ही दिल हो रहा होगा। कोई नहीं, रेडियो पे आपके लिए ये सॉन्ग ज़रूर बजेगा। इस सॉन्ग के बाद हम फिर से मिलेंगे ओनली ऑन रेडियो पालमपुर 90.4 FM विथ आरजे अंजलि।

कुमार शानू जी ने वैसे तो अपने संगीत करियर में बहुत सारे गाने गाए, सोनी म्यूजिक के लिए, टी सीरीज के लिए, टिप्स और सारे गामा के लिए, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वापस से मैं कह देती हूँ कि आई नो कि मैं सुर की इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर ये गाना कभी भी बजता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और दौर में पहुंच गए हैं, लाइक सपनों की दुनिया में कहीं खो गए हैं। 1942 में लव स्टोरी मूवी आई थी और इस मूवी में संगीत निर्देशक किया था आर डी बर्मन।

अब मेरा जाने का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो चुका है और आज तो कुमार शानू जी के सॉन्ग सुनकर मेरा दिल झूम रहा है। दिल धड़कन धड़कन पता है ना, धड़कन एकदम जोरों से धड़कने लगी है। अगर धड़कन की बात हो, फिल्म धड़कन का ये सॉन्ग तो आपने सुना होगा ना। तुम दिल के धड़कन में, हाँ हाँ हाँ यही सॉन्ग। ये सॉन्ग भी गाया है कुमार शानू जी ने। अब मैं जा ही रही हूँ तो आपको ये सॉन्ग तो मैं जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि फिल्म धड़कन से अगर ये सॉन्ग नहीं सुना कुमार शानू जी का तो क्या ही सुना। चलो इस सॉन्ग को सुन लो। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे जरूर मिलूंगी, ओनली ऑन रेडियो कोलंबो 90.4 FM पर। चलो मस्त रहना, व्यस्त रहना और सुनते रहना रेडियो पालनपुर।

0: बदन
1: तोरा फूल का बदन तोरा फूल का बदन
0: ओ जीत लिया रूप वाली तूने मोरा मन
2: उड़ी छबुले गजब की छुरी छुरी जिया में बस गई
3: बस गई
2: बस गई
3: धीरे धीरे हाले हाले बस गई
1: जिया हमारा घर।

बक्का पालनपुरी न्यू ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

जला है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम फिर भी।

0: करजो।
1: वाह, तो आज संपर्क करो रेडियो बालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 95 12 96 88 पर व्हाट्सएप करीने के बजी सोशल मीडिया ना कोई पण माध्यम मा टेक्स्ट मैसेजेस थी। मस्त रहो, व्यस्त रहो, सांभळता रहो रेडियो बालनपुर।

हेलो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजी दिलबर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के रोहिणी मंडल गवर्न रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर मैं लेके आता हूं सांसों की रूहानियत 2.0 शो को हम बात करते हैं कुछ इश्क की इश्क के रंग की इश्क में होने वाली जो मासूमियत है उसकी बात करते हैं जिसे इश्क होता है वही जानता है कि दर्द होता है या खुशियां मिलती है या फिर मीठा सा दर्द होता है पर वो कहते हैं ना इंसान ने अगर दिल को अपने सीने में छिपाए रखा है तो इस दिल की धड़कन जो सुन लेता है वही आपका इश्क होता है और ये प्रेम भरी बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये चाहता है कि हर दिल में एक प्यार भरी नमकीन सी मुस्कान हो और ये इश्क के किस्से जो सही जीवन में सच्चे से हो और ये किस्से ऐसा नहीं कि बस कहानी है पर किसी ना किसी ने इसे जिया भी है और ऐसी जिंदगानी के अनुभव को हम शेयर करते हैं क्योंकि चाहे जितनी भी नफरतें इस जहान में फैली हुई है उस सब के बीच प्यार तो पनपता है

एक और नए किस्से की बात करने वाले हैं। उसे कहानी के स्वरूप में मैं अपने शब्दों में आपको सुनाऊंगा। याद रखिएगा, ये कहानी किसी न किसी ने जी हुई है। ये हो सकता है कि जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, जिससे आप इस कहानी को महसूस कर रहे हैं, वो मेरे हो, पर इस कहानी के पीछे जो कथा बीज है वो किसी की जिंदगी में सही से अपने जीवन में उतारा हुआ एक अनुभव है। और ऐसे ही प्यार के किस्सों को बांटना मेरा भी काम है। तो आज की कहानी की शुरुआत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो पालनपुर।

ये दुनिया बिना शब्दों के जैसे फीकी सी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि नमक के बिना कोई भी खाना हमें अच्छा नहीं लगता। उसे आप खाने की रेसिपी के अंदर पकाकर उसका यूज करें या फिर बाहर से छिड़क कर, पर नमकीन जो एहसास होता है वो चाहिए। वैसे ही हम किसी भी प्यार के रिश्ते को कोई ना कोई नाम देते हैं। जैसे हम माँ से प्यार करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। जैसे हम भाई बहन के प्यार की बात करते हैं तो एक विश्वास की बात आती है, और जब दोस्ती की बात करते हैं तो भरोसे की बात आती है। वैसे ही आप पति पत्नी या प्रेमिका के प्यार की बात करते हैं तो एक दूसरे पर एतबार करने की बात आती है। और कहते हैं ना, फिर इस प्यार के वजह से हमारी सोशल लाइफ में जो रिश्ते बनते हैं उनका भी कोई ना कोई नाम होता है। चाचा चाची होता है, मामा मामी होता है, पति पत्नी होता है, और फूफा फूफी या फिर दादा दादी या फिर नाना और नानी। क्योंकि रिश्तों का नाम देना वो हमारी मजबूरी है। पर क्या आपको लगता है कि प्यार, इश्क और इसकी ये फीलिंग्स किसी भी नाम की मोहताज है? मुझे तो नहीं लगता। यही बात करेंगे हम, यानी कि मैं आरजे दिलबर सांसों की रूहानियत 2.0 पर। आज मैं दो लोगों की ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिनके इस प्यार भरे किस्से में उन्होंने तो ये कहा है, पर हमें भी लगता है कि इस प्यार का कोई नाम नहीं है, इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है और इसे नाम देना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज पहली बार मैं इस कहानी का नाम दे रहा हूं जिसमें कोई नाम न देने की बात है। कोई नाम न दो, ये कहानी है मित्तल और कनक की। मित्तल और कनक बचपन से लेकर आज तक, यानी युवानी की बात मैं नहीं कर रहा, पर आज वो 35 से 40 साल की उम्र में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। पर ये दोनों व्यक्तित्व, यानी कनक और मित्तल, इनकी कहानी में यही तो बात है कि प्यार में कोई रोड़ा नहीं, पर इसे नाम क्या दे वही बड़ी समस्या है। ब्रेक के बाद इस कहानी को आगे भी आप सुनेंगे और आपको लगेगा कि सच में प्यार कोई अलग सा एहसास है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

वो कहते हैं ना कि बचपन की दोस्ती बड़े होकर प्यार में बदलती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब बचपन से आप साथ में हो, एक दूसरे को इतना जानते हो, ट्रस्ट करते हो, फैमिलीज को भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो कहते हैं ना कि दो जिस्म पर एक जान वाली दोस्ती हो, तो सबको लगता है कि ये आगे जाके शादी कर फिर एक दूसरे के प्यार में ये पूरी जिंदगानी साथ में जी लेंगे। और मित्तल और कनक के लिए भी सारी दुनिया यही सोचती थी, घरवाले भी उनके लिए इत्मीनान से कोई रिश्ता ढूंढने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल ये दोनों अपनी जो इश्क वाली फीलिंग्स है उसे बयां करेंगे और इस रिश्ते को कोई नाम देंगे। पर ये किसे पता था कि ये दोनों कुछ अलग ही सोचते थे। बात ये थी कि कॉलेज के सेकंड ईयर में थीम रखी गई थी पूरे सेलिब्रेशन की, प्यार, इश्क और लव। जी हाँ दोस्तों, वर्ड तो सेम है पर वो कहते हैं ना फुर्रार से बोलना होता है, जहां पर जैनजी वाला वो स्वैग होता है तो आई लव यू यानी लव वर्ड सुटेबल होता है। कहीं पे शायराना कुछ माहौल बनाकर आप अपनी फीलिंग्स पेश करते हैं तो इश्क सही रहता है, और प्यार सिंपल जैसे है वैसे ही अपनी फीलिंग्स को आप बयां कर दे और फट से उसका जवाब मिल जाए तो उसे प्यार कहते हैं। ये मेरी डेफिनेशन है सही में, पर आपको भी अच्छी लगेगी। इसी बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कहानी पे ये सबको इंतजार था कि इस रिश्ते का कुछ नाम हो, पर कॉलेज के वो सेकंड ईयर में जब ये वर्ड्स वाली पूरी उनकी सेलिब्रेशन वीक चल रही थी तो बहुत सारे किस्से ऐसे उन्होंने देखे अपने दोस्तों के

उन्होंने एडमायर भी किया कि आप बयां करो। तभी कनक के दिल में भी एक छोटी सी हलचल होती है। उन्हें दोनों को ये फीलिंग्स का थोड़ा सा एहसास होता है कि क्या हम भी इस रिश्ते में बंधने के लिए वाकई क्या ओके है, या हम इस रिश्ते की जो डेफिनेशन है उसको संभाल पाएंगे। इसी सोच के साथ उस सुनहरी सुबह जब रोज डे सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ हुआ था। यही बात मैं बताने वाला हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

कनक और मित्तल बचपन में जब खेलने जाते थे या फिर किसी पिकनिक और टूर पे जाते थे इनके बीच बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। आपको लगा होगा कि किसी भी कहानी की शुरुआत तो इतनी डीप फीलिंग से होती है, जैसे कि मैं कहने वाला था कि ये सब कुछ शेयर करते थे, पर नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये हर वक्त छोटी से छोटी बात पर अपने ओपिनियन रखते थे, क्योंकि बचपन से यानी केजी से लेके कॉलेज तक की इनकी सारी पढ़ाई साथ में हुई थी और इनका रहना भी एक ही सोसाइटी में हुआ था। बाद में जब रीडेवलपमेंट हुआ तब भी ये दोनों सामने यानी पड़ोसी की तरह ही वहां पर बड़े हुए और रहे थे। इसलिए तो ये दोनों व्यक्तित्व आपस में झगड़ा करते रहते थे। पर फिर आप गलत सोच रहे, रुकेगा, ये झगड़े वो नहीं थे जो आप सोच रहे। ये मीठी सी नोकझोंक हुआ करती थी, अपनी राय रखने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए वो एक दूसरे के सामने कुछ भी चीज हो तो उसे खुलेआम बयां करते थे। इसलिए तो कनक और मित्तल का ये रिश्ता कुछ अलग था। मैं हूँ आरजे दिलवर और आप सुन रहे हैं रेडियो पालनपुर पर सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0। कनक और मित्तल दोनों इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे कि उन्हें लगता था कि वो कोई भी चीज एक दूसरे के सामने विरोध करके भी अगर पेश करेंगे तो भी दोनों पूरे डिस्कशन के बाद पर किसी न किसी एक निर्णय पर तो आएंगे ही। और यही बात तो सब लोगों को अच्छी लगती थी, टीचर्स हो, दोस्त हो और घर वालों, सबको लगता था कि इन दोनों के बीच जो भी चर्चा होती है उससे पूरे ग्रुप को फायदा होता है। ये दोनों चाहे जितने झगड़ ले पर एक दूसरे के लिए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी को कुछ हो गया, किसी का होमवर्क करना था, किसी के लिए कुछ लाना है, इन दोनों की चॉइसेस इन दोनों को पता होती थी। इतना ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के बर्थडे, दोस्तों के बर्थडे और इनमें सारी चीजों के लिए क्या किसको कैसे पसंद है, जैसे कि लव बर्ड्स के लिए होता है वैसे सारी चीजें इन्हें पता थी। बस बात ये थी कि आए दिन इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ अनबन हुआ करती थी। ऐसी ही नमकीन कहानी को आप भी सुनेंगे पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

लाइफ चेंज होती रहती है, जिंदगी के मायने बदलते रहते हैं। बस ऐसा ही हुआ। फिर कॉलेज लाइफ के बाद में दोनों की लाइफ की पटरी कुछ पैसे कमाने में लग गई, क्योंकि दोनों की लाइफ अब इंडिविजुअल पर अपना अस्तित्व बनाए हुए थी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। मित्तल की शादी तय हुई और फॉरेन की वो व्यक्ति के साथ जिसका पूरा साम्राज्य फॉरेन में, यानी ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस का एक बड़ा एम्पायर सेटल था उसकी फैमिली में, वहां पर हुई। और आप जानते हैं ना कि जहां पर फैमिली बिजनेस या फिर बिजनेस की रिलेशन की वजह से शादियां फिक्स होती है, वहां पर वो दूसरे व्यक्ति को जाकर सेटल होना ही पड़ता है। प्यार वैसे ही था, फोन पर बातें ही वैसे हो रही थी। आज भी अपनी लाइफ में बहुत सारे मुद्दों पर ये झगड़ लिया करते थे, अनबन रहती थी। लाइफ में सेटलमेंट जैसा एक तरीके से था, बस यही था कि शादी मित्तल की हो चुकी थी। कनक और मित्तल अपनी लाइफ में वैसे देखा जाए तो आगे निकल चुके थे। कुछ साल बीतते हैं, बातचीत में ये पता चलता रहता है कि कनक तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, यानी कि शादी वाली वो चीज को अपनाने के लिए। दूसरी तरफ मित्तल, जिनकी लाइफ में भी अब बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जैसा बंदा सोचा है, जैसा बंदा सोचता है वैसा ही लाइफ में हो, ऐसा कौन मानता है? क्योंकि सब लोगों को पता है कि हम जो सोचते हैं उसके आसपास 19-20 हो जाता है, पर लाइफ पूरी वैसी नहीं होती है। कनक अभी भी अपनी सीधी पटरी पे चला जा रहा है और दूसरी तरफ मित्तल की लाइफ में डिवोर्स वाली मोड आ जाती है। एक बच्चा है और उसके साथ में मित्तल वापस इंडिया सेटल होने की सोच को लेकर, रिटर्न होने का पूरा अपना मन बनाकर, बिना किसी फैमिली मेंबर्स को बताए वो प्लेन लैंड कर देते हैं। यानी कि अब कनक और मित्तल दोनों इसी जहां में, इसी हवा और फिजा में लाइफ जीने के लिए रेडी है। पर थोड़े बहुत से बदलाव हो चुके हैं। क्या अब भी वही फीलिंग्स, वही प्यार वाली चीजें जो उनके बीच में है, वो दोनों को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं? इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

वैसे तो देखा जाए मित्तल ने ये बात कनक को बताई नहीं, ये आप सबको लगता है कि क्या प्यार में ये सही है, पर यही तो जानना है कि ये वाला प्यार जहां पर ट्रस्ट है, जहां पर एक दूसरे पे इत्मीनान कर कर बातचीत करने वाला रिश्ता है, और वहां पर भी कुछ बातें अगर कुछ समय तक नहीं बताई जाती तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। आप सुन रहे हैं 2.0 सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज, आरजे दिलबर के साथ, रेडियो पालनपुर पर। तो दोस्तों फिर ये होता है कि अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, कैसी लाइफ जा रही है उसके बारे में बातचीत होती है, पर दोनों ही एक ही शहर में हैं, ये बात साझा नहीं करते हैं। और इसी बीच एक मॉल में मुलाकात हो जाती है दोनों की, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर भी कोई सवाल आता नहीं कि क्यों मुझे नहीं बताया, क्यों ऐसा हुआ। दोनों की मुलाकात एक दिन मॉल में हो जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कुछ पल के लिए आंखें नम हो जाती हैं। अब सोच रहे थे कि झगड़ा हुआ होगा, अनबन हुई होगी, क्यों तुमने नहीं बताया, ये सवाल पूछे गए होंगे, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो रिश्ता अलग से है, यही वाले प्यार के रंग की हम बात करने वाले हैं जहां पर अंडरस्टैंडिंग है। दोनों को लगा कि जो भी हुआ सही हुआ, वक्त हो चुका था कि जब एक दूसरे को पता चल जाए कि हम दोनों यहीं पर हैं। पर फिर भी दोनों ने और कुछ बातें की और कहा कि चलो इत्मीनान से छुट्टी के दिन बात करते हैं। वैसा बोल के दोनों अपनी शॉपिंग करके चले गए। ये भरोसा, ये दोस्ती, ये एक ट्रस्ट था कि मेरे रिश्ते में अगर मेरे पार्टनर ने कुछ मुझे नहीं बताया तो कुछ सही ही होगा ना, क्यों हम गलत के बारे में सोचे और गलत ही होगा या फिर गलत ही चीजें इसके पीछे होगी, ये वाले डाउट ही तो रिश्तों को कमजोर बनाते हैं। और यही बात सीखने की है, जिस प्यार का कोई नाम नहीं है, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, वहां पर इतनी अगर अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट होते हैं तो फिर हमारी लाइफ में इश्यू क्यों होते हैं, क्योंकि हमें ढूंढ कर निकालना है कि भी लाइफ सीधी क्यों जा रही है, खुशियां इतनी सारी क्यों है। हमें थोड़ा सा मिर्च लगाना होता है, पर मिर्च खाने में अच्छा लगता है, मिर्च रिश्तों में अगर लग जाता है तो फिर बहुत दर्द होता है, और वो रिश्ते जहां पर मिर्च लगती है वहां पर कोई दवाई काम नहीं आती। यही तो सीखना है कनक और मित्तल के इस रिश्ते से। छुट्टी के दिन फोन पर बात होती है, सारी चीजें शेयर की जाती है कि बस मुझे लगा था कि

मुझे किसी के साथ तुम्हारे साथ भी एक वक्त से पहले मुझे ये चीजें शेयर नहीं करनी थी इसलिए मैंने नहीं की है और इसी बात पर फिर दूसरी बार फेस टू फेस मिलकर बातें करने की वो ठान लेते हैं। फिर क्या हुआ जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

फिर वो शाम आई जब कनक मित्तल वो छोटा सा बच्चा सारे लोग वो ही कॉफी की शॉप में मिलते हैं जहां पर कैफेचिनो वाली कॉफी बढ़िया से मिलती है जो दोनों को अच्छी लगती है और वो जो छोटा सा बच्चा इस लाइफ में वो भी इसका साक्षी बनने वाला था वो खुद वहां पर कैफेचिनो वाली आइसक्रीम खा रहा है। बातें यहां पर आके रुकती है, सारी जिंदगी की बातें शेयर होती है। वापिस उसी मोड़ पर एक बार वही प्रपोजल आता है कनक की ओर से, क्या अब लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए या फिर हम उस जो कॉलेज लाइफ में बात अधूरी छोड़ गए थे उसे वापिस आगे बढ़ाए, क्या हम शादी करके साथ में रह सकते हैं, क्या तुम्हें प्यार आज भी हमारे बीच जो था उस पर यकीन है। मित्तल का जवाब यही है कि प्यार था, है और रहेगा, पर न जाने क्यों मैंने उस रूप में उस फॉर्मेट में तुम्हें कभी देखा ही नहीं है और मैं इसीलिए ये डर महसूस कर कर पूरी लाइफ जीने की सोचने की बात वो जहन में आ जाए ऐसा क्यों सोचो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो प्यार है ये सच्चा है, इस पे ट्रस्ट है, इस पे इत्मीनान है मुझे, इस पे मुझे लगता है कि रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी रीजन के बिना मैं बात कर सकूं, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहां पर दिखने मिलती है, वहां पर नहीं होती है। और जैसे मैंने कोई चीज नहीं बताई तो सवाल सामने से नहीं आए वो इसी रिश्ते में मुमकिन है, वरना तो अगर हम वापिस वही रिश्तों में बन जाएंगे और इस प्यार का कोई नाम दे देंगे तो फिर क्या होगा। और मुझे भी पता नहीं कि मैं कितनी लाइफ को आगे कहां तक खींच कर ले जाने के लायक हूं, और इसीलिए इस छोटे बच्चे की सोच को लेकर भी, इसकी लाइफ को लेकर भी मेरा यही सोचना है कि उसे तुम्हारा प्यार भी बिना किसी शर्त के, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी ऐसे शक या फिर जिम्मेदारी के मिले कि जहां पर वो इत्मीनान से जब भी अपनी लाइफ में मुश्किली हो तो वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी पुकार सके। बातों को सुनकर लगता है कि किताबी बातें हैं, पर वो मेरे लफ्जों का थोड़ा सा जादू है, अदरवाइज ये सच्ची कहानी है। फिर क्या हुआ, दोनों की लाइफ कैसे जा रही है, आज क्या है इस रिश्ते का नाम, वही मैं बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पालनपुर, सांसों की रूहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।

क्या नाम दें हम इस रिश्ते का, इस प्यार को क्या नाम दिया जा सकता है? क्या हम ये सोचते हैं कि हीर राजा, क्या हम ये सोचते हैं कि लैला मजनू, क्या हम ये सोचते हैं कि राधा कृष्ण, सुदामा जी नरसिंह मेहता का वो भक्ति का भाव, वो समर्पण का भाव मीराबाई का, क्या हम इसे दोस्ती का प्यार कहे? मुझे लगता है कि हम इसे किसी भी तरह, किसी भी लफ्जों में इसे नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। इस रिश्ते का कोई नाम ना ही दे वही वाजिब है, फिर भी ये प्यार तो है। दोनों ने ये मुकम्मल जहां उसे पा लिया था कि जहां पर रिश्ते नहीं चाहिए, जहां पर आंखों से बात होती है, लफ्जों से बयां होती है, दिल की धड़कनें बिना कान से भी सुनाई देती है। हम कहते हैं ना कि प्यार यही है जिसमें झगड़ा हो 100 बार पर उस झगड़े के बाद में मनाना या फिर कोई भी चीज के लिए मैंने ये किया, तूने ये किया, अब मैं करूं या तू कर, ये वाली बात नहीं आनी चाहिए। इसी बात को लेकर तो मैं आज ये कहानी लेके आया था कि आज भी ये दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, इस प्यार का कोई नाम नहीं है, फिर भी दोनों के बीच ऐसा पक्का वाला रिश्ता है जो सुकून सी नींद देता है, सुकून सा दिन देता है, सुकून सी राहत देता है, जिसके लिए हम तड़पते हैं। तो दोस्तों, इस जहां में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसे नाम देने की जरूरत नहीं है, वैसे रिश्तों को आपको और हमें समझना चाहिए। अपनी लाइफ में पूरा रिश्ता वैसा रख पाए ना रख पाए, पर कुछ समय के लिए तो ये बात होनी चाहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो पहलनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आरजे दिलवर के साथ सांसों की रुहानियत, दिल की धड़कन, दिल की आवाज 2.0।